0: बाटे जाने केजरे सेता मंदो रिलु ति कले कंडे रे अनि ये फंदल लुजी दंडे अनि फंदल अनि मोडे च हां अनि चांजे च
1: सर सर त पाला चांगो ने तु तु बरबा कोंजो देले जा यंजो देव के ती चोगा मही बा अन जे के ये गो सिलु ति किन जे या ये बा अन से जे जमीन नो को तेरा दि सा तुम सिम कोंगो के ती ती ती
0: दे दे
1: सामा सा ता चोरा
0: दे दे दे
1: अनि जे के
0: 在这个时候严重的这个事了但是下班之后你那个时间的这个严重的但是陆地人不同的人的这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这 karasa na ta nena ngandu pela mudu langa yo ma te ani nambi tu dan pater ani rule yo ma re ta ti sa na ngandu ani hesa chimi na ani nimchi da ani hesa ngabu ni de ba sun ji ke langa ti na nima na chulu ru ba ngandu ti ni ya hesa chinde ga nimi ni go ru ನಿಮ್ಮ ತಂಗಬತ್ತಿ ತಿನ್ನಿಯ ಚೀಜ ಕೊಂಬ ಚಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನಿಂಬತ್ತಿ ಕೊಂಬ ಚಂದ ನಾನು ಶಿನೇಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೇ ಅದು
1: ನಿಲೋತ ನಿಲ್ತಿರು
0: ಹ್ಮ್ ತಾತಂದ ಹೆಸ ಯಾಚಿ ಮಾಲೋನೆ ಲೋಟು ಬಿಡುವ ಜಜ ಅಂತ ನಂದು ಲಿಂಗಲ್ಲ ಮೊದಲು ಲಂಗಾನಿ ಶೇಮ ಗೋರ್ವ ತ
1: ಯಂಜೋ ಶೇಮ ಗೋಚಿ
0: ಹ್ಮ್ ತ ಯಂಜೋ ಶೇಮ ಗೋಚಿ ತ ರುಲು ಲಂಗಾ ತುಂಬಜ ತ ಚೆಮಂಗದು ಚಿಂದುನಿ ದೇ ಲಿಂಗಲ್ಲ अन्य रुलु लंगा तो ठोंग बिना दिवे जान दे लाओ ता दिवे जा अन्य युगों दे
1: मावा
0: मारो डोगरे तो अन्य सुसु के ता समना ला ता पैन से या बोले ना तो चुदो छेम डोगे दूर सुन जो सुसु ना समना काव्शिप दो
1: Lina,